0: दिल की बात प्यार के साथ। तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करब।
1: सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। बालों को गन्ना लंबा करता है। खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
2: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
1: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी।

इस्तेमाल करिए जी अपने लिए जनाब, अपनों के लिए, अपने अजीज दोस्तों के लिए, अपने परायों के लिए, जिनके लिए भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे या इस्तेमाल करना हो तो जरूर जरूर एक बार ट्राई कर रही हो पाजी, जरूर इस्तेमाल खुजीफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम और सराय आदाद खुजीफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश या द राइस फेस वाश अजगोला बीमोर सरा।

रखे जी। हाँ जनाब बड़ी केयर फन गल ये क्या ना ऐसा ये था ना सलाई माते जब त्याय छे वाले कम साला पखेर लोग रे जुलिये ताकलाए बे दुलिये चलांगे ये तक बिल्कुल दासा लदा गे देना मुनाखा पाए वेले चशाई की इरफान को ला ढेरा जेरम नना तो प्रोग्राम के हर कलाएं खुश आमदीद सलाई माते पखेली ना पखेली ना।

काल होने रहे अलार मंडा के रोतराप के रमंडा का रात्राप का अच्छे समय दरला रावडल मोबाइल में पलुस रेदाई निवलाई दे तो नंबर पे वायो का खबर है रोसारा के नो पर जर जर ये मिलाओ का नंबर दे डेर साउ का ची डेर तवे शाया पमखवे के मिलावा ओ वो के खुशा वंदे घाट घाट आया कुर्बानो नदर सारा वेले का पखपल जारो چپ بل چھائے وہ نوین او کچھا پشتن اکڑا بیورتا ویایا چھ دادا شاید خانا

जी जनाब, हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा धिराइस फेस वाश इस्तेमाल करो जो बिल्कुल ये इस्तेमाल करो सीधा बेहतरीन फायदा दर कभी बेहतरीन मक्स पी नी शलाई कभी भी खोगे नमक है हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम ची दशपे तुवेर तला गवली भी बेपदा फेस वाश सबूत अविंजा का विटामिन सी फेस वाश ते जरूरत भी द हुज़ैफ़ा कंपनी नौका हमारे सर इस्तेमाल वाला।

कम दे वहां भी जिदरी सर तमाम प्रोडक्ट मिलावे यहां अस्सलाम वालेकुम सो अली जा खटक दंपल को नजर सलाम ने मिल के हां प्रोग्राम ने जबरदस्त है और खुशखबरी मैसूद डी आई खान दुआ सलाम कभी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।

0: हाँ भाई सलाम अलैकुम भाई संग गई दुआ गानी सलाम उन्हें मुखबिल करो जो ईमान यमा दखपल कोर ना भाई जना बकर एक रेडियो बांदरी आवाज बिल्कुल खुले मैदार जी खान ने आवाज के अंदर सारा खान हुई दुआ गानी सलाम उन्हें मुखबिल का भाई जना मंग स्ताव सुधा इश्मा हर्बल आयल न डेर जात खुशालो मुतमईन यू हाँ स्वदेश वाई सलामुन में केवल का आदन द टांग ना वाई चे दुआगान सलामुन में केवल का मैं टांग से आदन हूँ और दिन लावा जिकम देनो इद्रीस खटक वाई दुआगान सलामुन में केवल का कामरान बिठानी वाई चे दर बिठानो ना दुआगान सलामुन में केवल का अभी हमारवत वाई चे सलाम अलैकुम सरजी संगे नरेश मार टोल प्रोडक्ट मंग इस्तेमाल करी और डे जाते खुशहाल यू हाँ जहांगीर खान वाई दुआगान सलामुन में केवल का असर करक न जहांगीर खान ये वहाँ और उमंग द इश्मा प्रोडक्ट न खुशहाल मुतमईन सलाम सब लिसनर को सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह काशान हुई दुआगान सलामुन में केवल का सरजी से काशान यम दखपल कोर नाम और स्टार प्रोग्राम में डे इज्जत खुशी की अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम पमागरान इनाम खाना जमा खोगा रोजाना एंड स्वीट रोजाना संग इस्ता वड़खोर प्लीज रोजाना टोल आल एफएम रेडियो वाला तो रिक्वेस्ट है जिमाला टोल यो पेरा जरा दुआओं की मदी हागुल सब्जे लखे रुकी हाँ लखे रुकी भाई संगे तो अगानी सलमुन में केवल के हाँ आवाज चिक्का लुचंद को अब्दुल गपूर वो पखेर आले मस्त शान जबरदस्त शान आज ही इनाम खान फातिमा कायनात लंडी वा तो अगानी सलमुन के भी मलाला फरियादी अगानी सलमुन के बड़े जाता मनना खुशहाल हो जहां आगा तो अगानी सलमुन को सयम द डबर न नूर ने खबर को सलमुन में केवल के जमान खडक तो अगानी सलमुन के शाइस्ता वजीरा तो अगानी सलमुन के सामने मेरे प्यारे भाई सस्ता खुर्शीद तो अगानी सलमुन में केवल का भाई जलीमी रेडियो बंद आवाज बिल्कुल ओके देवस खान अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई कारी अबिदुल्ला प्रोग्राम बहुत मजा करते हैं लेकिन गाने भेजने दुरुस्त नहीं है ज्यादा मरना चमा चाम बहानो वाड़ू हाँ टाइम खत्म छू इंशाल्लाह को जिंदगी वो मौको ब्याह प्रोग्राम को दर ब्याह पूरी खपल रोर कुरबाई नफाना और का इजाजत चल तो उसी खाद उसी जबार उसी दलवी अल्लाह पामान ढेर ज्यादा मरना थैंक यू खामोश ले दलवी अल्लाह पामान
1: हाजी अब्दुल मालिक खबर को तकबीना और यो रज द अल्टो नरा कुजीदम चिखपा के में से चल रहा ले ब्याती गर्दी दे निशु नो मा पर डुबाने द ऐश मा आयल सिपा तो खुदे यकीन हो।